0: सम्पर्क 071-414-633 मोबाइल 98-570-43-996 लुम्बिनी सिटी कलेज तिलोत्तमा 4 ड्राइभ हटोल रूपन्देही।
1: दिलकुमारी, आज त काम गर्ने जागरै छैन।
2: हो भाइ, आज मलाई पनि काम गर्ने जागरै छैन।
3: ओ दिलकुमारी सुन्तली, के गरेको? यो पाराले काम त गराइ हुँदैन।
2: ठेकदार साहब, हामी काम गरेका छौँ, उत्ति नै मेहनत गरेका छौँ, तर पनि हाम्रो ज्याला हरिदाईको भन्दा कम नै छ। ठेकदार साहब, हामीसँग पनि समान व्यवहार गर्नुहोस्।
4: कहीँ हामी पनि श्रमको मूल्यमा यस्तै भेदभाव गरिरहेका त छैनौ। लिङ्गको आधारमा कुनै भेदभाव नगरौं।
5: सामाजिक जनचेतनाका लागि तिलोत्तमा नगरपालिका र रेडियो लुम्बिनी एवं तिलोत्तमा टेलिभिजन मणिग्राम रूपन्देही।
6: अब सम्पूर्ण इन्जिनियरिङ सेवाहरूको लागि सनराइज इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी।
7: हाम्रा सेवाहरू:
6: आधुनिक भवनको नक्सा डिजाइन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने,
7: बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीको लागि घर जग्गा तथा सवारी साधनको मूल्याङ्कन गर्ने,
6: विदेश अध्ययनमा जाने विद्यार्थीको लागि भित्र मूल्याङ्कन गर्ने,
7: घरेलु कार्यालयको लागि प्रारम्भिक वातावरणीय प्रतिवेदन तयार गर्ने।
6: सनराइज इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी, रेडियो लुम्बिनीको भवन मणिग्राम रूपन्देही,
8: शाखा कार्यालय तिलोत्तमा नगरपालिकाको अगाडि।
0: सम्पर्क 98-570-24-344, 98-570-35-227 र 98-570-73-220।
4: बुटोल भएर हवाको बीच मणिग्राममा स्तरीय क्लिनिक नीता पोली क्लिनिक प्रणाली।
9: हाम्रा सेवाहरू:
4: जनरल फिजिसियन,
9: स्त्री तथा प्रसुति,
4: बाल रोग,
9: छाला तथा यौन रोग,
4: हार जोड्ने नसा तथा बाथ रोग,
9: टाउको तथा मनोरोग,
4: नाक कान घाँटी,
9: जनरल सर्जरी,
4: भिडियो एक्सरे,
9: डिजिटल एक्सरे,
4: ईसीजी,
9: डेन्टल तथा प्याथोलोजी,
4: फिजियोथेरापी
9: तथा फार्मेसी सेवाहरू उपलब्ध छन्।
10: किशोर किशोरी, युवाहरू र 15-49 वर्षसम्म को महिलाहरूलाई अस्थायी परिवार योजनाको साधन, लामो समयको साधनमा कपरटी र इम्प्लान्ट सेवाहरू उपलब्ध रहेको छ।
11: गुणस्तरीय सेवामा विगत लामो समयदेखि प्रतिबद्ध
12: नीता पोलिक्लिनिक प्राली, तिलोत्तमा 5 मणिग्राम रूपन्देही,
13: रेडियो लुम्बिनीको ठ्याक्कै अगाडि। फोन नम्बर 071-562-832, मोबाइल
14: 98-570-21-835।
15: नमस्कार हो नमस्कार नाई, ई बुढ़ौती में बूढ़ा बूढ़ी का बात कही जाता? अका होई डॉक्टर नी बहनी, बड़की पतोहिया दुई जीव के भइल भाई, आ ओकरे देख रेख के जोगाड़ खोजल जात बा। आहा, ई होखे न तरीका सास ससुर के? हाँ, तब का पेट में बच्चा रहले के बाद 2 वर्ष के जब तक नाई होई जाले, ई 1000 दिन में अम्मा और बच्चा के पोषण युक्त खाना खियाए के चाही और सर सफाई के बारे में ख्याल कइल जाला, तब बच्चा और अम्मा के दोनों जनी के स्वास्थ्य ठीक रही।
16: देखा, पाथर खोजत के भगवाने मिले जैसन होई गईल, और का करे पड़ाला डॉक्टराइन बहिनी तनी बता दत?
15: ठीक बा, सुनल जाए, रेडियो में लगातार बाजत बा।
17: गोश मछली अंडा सबसे बढ़िया बा, गोश मछली अंडा सबसे बढ़िया बा,
15: फल फूल और साग पात बच्चा के खाना साथ साथ
16: सब मिल के खियावल जाए,
15: कमती में 2 साल तक महतारी के दूध न छोड़ावल जाए, बच्चा चालाक और निरोगी बनावल जाए। हाँ, हम ते बच्चा के स्वास्थ्य बनावे के संति 6 महीना पूरा भइले के बाद अम्मा के दूध के साथ सक भर ते घर के ताजा और तरकारी, अंडा, मछरी, गोश, हरियर साग पात और पियर जात के फल फूल खियावेली।
16: ओकरे साथ साथ गर्भवती मेहरारू के रोज रोज जितना खियावल जात रहल गे, उसे एक जवा बेसी दिहल जाए, और बच्चा के महतारी के जितना देत रहल गे रोज, उसे 2 जवा बेसी देवल जाए।
15: लेकिन ये सब खियाए वाला चीज और तैयार करे के खियावे के समय में सर सफाई में ठीक से ध्यान दिए के चाही, खास करके हाथ सफा रख, खाए वाला सामान ठीक से धो के और पानी भी सक भर धिका के पिए के चाही, बुझलू ने?
16: आईडी नेपाल के आर्थिक सहयोग और सेतो गुरास बाल विकास सेवा रूपन्देही के व्यवस्थापन में संचालित पोषण मार्फत जीवन रूपांतरण परियोजना और रूपन्देही FM द्वारा सचेतना में जारी संदेश।
18: नमस्ते है, नमस्ते होइन, बुढेसकालमा के कुरामा हो बुढा बुढी गफी तै?
14: के हुनु नर्स नानी जेठी बुहारी दुई जुकी बाकी स्या ससुरको मेसो खोज्दै छौ क्या
18: आहा यो नि तरिका सासु ससुराको हो त पेटमा बच्चा बसेदेखि दुई वर्षको हुन्जेलसम्मका यी हजार दिनमा आमा र बच्चालाई पोषणयुक्त खाना खुवाउने र सरसफाइका बारेमा ध्यान पुर्याउन सके आमा र बच्चा दुवैको स्वास्थ्य राम्रो बनाउन सकिन्छ
19: लौ ढुङ्गो खोज्दा देउतै मिले चाहिँ भयो के गर्नुपर्छ भन्दिउँ त नानी
18: ल यो सुन्नु त रेडियोमा फुकेको फुकै हुन्छ त
20: अनि फलफुल र सागपात बच्चाको खाना साथ साथ
21: सबै मिलाई खुवाउ
20: कम्तीमा दुई वर्षसम्म आमाको दुध पनि नछुटाउ बच्चा चलाक निरोगी बनाऊ हो मैले बच्चालाई निरोगी र चलाक बनाउनका लागि छ महिना पुरा भएपछि आमाको दुधको साथै अण्डा माछा मासु हरिया सागपात तथा पहेँला जातका फलफुल पनि खुवाए तपाईँले नि
22: साथै गर्भवती महिलालाई हरेक दिन सधैँ खाइरहेको भन्दा एक पटक थप र बच्चालाई दुध खुवाइरहेकी आमालाई दुई पटक थप पोसिलो खाना खुवाऊ
23: हो यी सबै खानेकुरा तयार पार्ने र खुवाउने बेलामा सरसफाइमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ है खास गरी हात सफा राख्ने खानेकुरा कुरा राम्ररी धुने र पखाल्ने अनि पानी पनि सकेसम्म उमालेको प्रयोग गर्नुपर्छ बुझ्नु भयो नि आईडीई नेपाल बी ग्रुपको साझेदारीमा ग्लोबल न्यूट्रिशन परियोजना तथा कृष्णसार एफएम द्वारा सचेतनाका लागि जारी सन्देश

0: चिकित्सा पद्धति को जननी आयुर्वेद संसार के शक्तिशाली जड़ी बुटी नेपाली जब नेपाली जड़ी बुटी आयुर्वेदिक उपचार पद्धति में प्रयोग हुन्छन् अनि हासिल हुन्छन् जस्तो सुकै रोगमा पनि सफलता नेपाली जड़ीबुटी को चर्चा अनि रोगमाथि हासिल भएको सफलताको वास्तविक जीवन कथा कार्यक्रम मेरो देश मेरो आयुर्वेद यस कार्यक्रमको सहयात्री
1: वैदिक आयुर्वेद सेवा प्राली तिलोत्तमा 5 मणिग्राम रूपन्देही शान्ति स्कूल अगाडि मोबाइल 98570 59934 लाइन्स चोक नारायणगढ़ चितवन मोबाइल 98550 5094

0: वात्सल्य बुटवल क्लिनिक सुखनगर बुटवल सम्पर्क 9803364060।
1: आग लागे हुन नदिन सधैं चनाखो बनाऊ। खाना पकाइसकेपछि आगो ग्यास चुलो स्टोव वा हिटर निभाऊ। सिलिन्डरको रेगुलेटर पाइप वा चुलोबाट ग्यास लिक भए नभएको यकिन गरौं। ग्यासको गन्ध आए बेवास्ता नगरौं। सलाई लाइटर बाल बालिकाले भेट्याउने ठाउँमा नराखौ। दाउरा बालेर खाना पकाइसकेपछि पानी छ्यापेर आगो निभाऊ। चुरोट तमाखु चिलिम सुल्पा नखाऊ। खाएमा आगो राम्ररी निभाऊ। बिजुलीका तार प्लग स्विच वा वायरिङ ठिक अवस्थामा भए नभएको जाँच गरौं। घर बस्ती नजिकै पोखरी ट्याङ्की वा अन्य कुनै तरिकाले पानीको जोहो गरिराखौ। आग लागिजन्य विपदबाट बस्न चनाखो बनाऊ। हावाहुरीबाट हुने क्षति कम गर्न पूर्व तयारी एवं सतर्कता अपनाऊ। लुम्बिनी प्रदेश सरकार गृह मन्त्रालय राप्ती उपत्यका दिउखुरी नेपाल।
2: डेंगू से बचे की खंती मच्छर के काटे से बचे भी सर्वोत्तम उपाय हुए। पूरा शरीर ढके वाला कपड़ा पहना जाए। सूते के समय मच्छर से बचे खंती मच्छरदानी के प्रयोग करा जाए। घर के आसपास और खेत बाड़ी में काम करे के समय मच्छर के काटे से बचा जाए। झाल और दरवाजा में जाली लगाई के बंद करा जाए। मच्छर उत्पन्न न हुए देख लिए घर के आसपास सफा रखा जाए और पानी जमे के न देवा जाए। अचानक बुखार और ज्यादा सरदर्द भय में तुरंत नजीक के स्वास्थ्य संस्था या अस्पताल में जचावा जाए।
3: अनुरोध आग लुम्बिनी प्रदेश सरकार गृह मन्त्रालय राप्ती उपत्यका देउखुरी नेपाल।
4: एसई को रिजल्ट कहिले आउला भन्दा भन्दै 11 कक्षामा कहाँ भर्ना हुने हो भन्ने पो टेन्सन भयो बा। जान्ने बुझ्नेहरुको कुरा सुन्दा शंकरनगर दुर्गादत्त माविमै पढ्नु पर्छ भन्छन्। खै के हो के हो
5: आमै नि त्यति पनि थाहा छैन ल सुन न त्यसो भए।
6: नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त सामुदायिक मावि भएकोले
5: माध्यमिक तहमा जिल्लामै उत्कृष्ट नतिजा प्राप्त गरिरहेकोले
6: न्यूनतम शुल्कमा गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध हुने भएकोले
5: उत्पादित जनशक्ति हरेक क्षेत्रमा सफल भएकोले
6: अंग्रेजी र नेपाली दुवै माध्यम अलग अलग कक्षा को व्यवस्था होने भएकोले
7: शिक्षा अंतर्गत मेजर विषय तथा व्यवस्थापन में होटल मैनेजमेंट कंप्यूटर साइंस र फाइनेंस जस्ता विषय पठन पाठन होने भएकोले
6: ख्यातिप्राप्त अनुभवी शिक्षक प्राध्यापक पठन पाठन होने भएकोले
5: सुविधा संपन्न भवन तथा पर्याप्त खेल मैदान को व्यवस्था भएकोले
6: नेपाल सरकार का संपूर्ण छात्रवृत्ति समेत उपलब्ध होने भएकोले
5: बस को सुविधा समेत भएकोले
6: स्नातक तर्फ शंकरनगर बहुमुखी कैंपस समेत सँगै रहेकोले
4: त अब ढुक्क भए बरु तपाईँका पनि छोरा छोरीलाई लैहाल्नुहोस् है भर्ना गर्न शंकरनगर दुर्गादत्त माविमा।
6: सम्पर्क शंकरनगर दुर्गादत्त माध्यमिक विद्यालय तिलोत्तमा 2 शंकरनगर रूपन्देही एन इन्स्टिट्युसन अफ क्वालिटी एजुकेशन।
8: कति धेरै भिड हो मलाई यो सेतो छडी समातेर उभिन पनि गाह्रो भइसक्यो। ल मलाई कसले छुँदैछ यताउता आँखा भनी देख्दिन कसलाई आरोप लगाउनु र
9: अपाङ्गता भएको व्यक्ति भनेर हेप्न पाइन्छ लौ न सहयोग गर्नुहोस्।
10: ओए बहिनीलाई के गरेको हो त मान्छे नै रहेनछस्।
11: सार्वजनिक यातायातमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकता दिउ। अपाङ्गता भएका महिलामाथि हुने दुर्व्यवहार विरुद्ध हामी सबै एक हौं।
12: डिसेबिलिटी राइट्स फण्डको आर्थिक सहयोगमा नेत्रहीन महिला संघ नेपालद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
13: रेडियो लुम्बिनी 96.8 मेगाहर्ट्ज।